0: रेडियो भेरी एफएम 98.6
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसी अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला।

छोरा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानी मा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानी मा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

आपके क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल पेक्युबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पेक्युबार में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पेक्युबार नेपाल के अपने क्यूआर
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 MHz
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजे को छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: हवस् त आजका लागि रेडियो भेरी एफएम 98.6 र 102.7 मेगाहर्जको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही सकिन्छ भोलि बिहान 5 बजे विविध सूचनामूलक समाचारमूलक अनि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको मीठो निन्द्राको कामना गर्दै बिदा हुन्छौं शुभरात्री